0: सम्पूर्ण मानव चोलाको जय होस्। राधे राधे।
1: रेडियो साइन 89.8 मेगाहर्ट्ज।

सूचना संगीत मनोरंजन को अतुत्साही यो हो पश्चिम चितवन को आवाज सामुदायिक रेडियो साहिनो साहिनो साहिनो 39.8 मेगाहर्ट्ज।